है और ये कि तकरीबन 2700 घर सैलाब की जद में आए हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 20 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के निकट चिबा प्रीफेक्चर में हुई रिकॉर्ड वर्षा को बृहस्पतिवार को एक सप्ताह पूरा हो गया। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा में 13 लोगों की मौत हुई, एक लापता हुआ और करीब 2,700 मकानों में पानी भर गया। चिबा शहर के अधिकारियों के अनुसार सड़कों पर बंद पड़े लगभग सभी वाहनों को हटा दिया गया है, लेकिन उनके मालिकों की पहचान करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। चिबा प्रीफेक्चर में 13 अगस्त की शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। चिबा शहर में मात्र आधे दिन में अगस्त महीने की औसत वर्षा से लगभग 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 78 मकानों को गंभीर और 49 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 2,695 मकान बाढ़ से कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। समूचे प्रीफेक्चर में लगभग 2,700 वाहन बाढ़ के पानी में डूब जाने से खराब हो गए थे। इनमें से सड़कों पर बंद पड़े लगभग 2,500 वाहन बुधवार तक हटा लिए गए थे। एक स्थल पर रखे ऐसे कुछ वाहनों के मालिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रीफेक्चर के सामने चुनौती है कि मालिकों को वाहन वापस करने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु का कहना है कि जापान सऊदी अरब और 5 अन्य खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए एक व्यापक सहयोग योजना तैयार करेगा। गौरतलब है कि ईरान में जारी घटनाक्रमों का इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मोतेगी ने बुधवार को रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। उन्होंने दोपहर के भोज पर चर्चा सहित लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। मोतेगी ने शहजादा फैसल को बताया कि जापान अपनी पावर एशिया पहल के तहत एशिया क्षेत्र में तेल भंडार बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने प्रचुर ऊर्जा संसाधनों वाले सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की जापान की इच्छा भी व्यक्त की। शहजादा फैसल ने जापान की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश जापान सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। ईरान के हालात पर दोनों विदेश मंत्रियों ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के होर्मुज जलडमरू मध्य से मुक्त व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के महत्व पर सहमति व्यक्त की। जापान का रक्षा मंत्रालय वित्त वर्ष 2027 के लिए लगभग 90 खरब येन यानी करीब 57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च बजट का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय अनुमानित लागत का उल्लेख किए बिना AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियां अपनाने जैसे उपायों के लिए भी धन का अनुरोध करेगा। असल में ऐसी कुछ लागतों का अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि जापान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों में संशोधन को लेकर चर्चा वर्षांत तक जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध में AI और ड्रोन का उपयोग करने वाले नए पैंतरों का मुकाबला करने के लिए मंत्रालय का अनुरोध रक्षा क्षमता पर केंद्रित रहेगा। इसमें देश की रक्षा की नींव मजबूत करने और लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय थल, समुद्री और वायु आत्मरक्षा बलों की देखरेख करने वाली संयुक्त अभियान कमान में AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियाँ अपनाना चाहता है। इसके अलावा मंत्रालय उन्नत क्लाउड सिस्टम शुरू करने और पानी के अंदर से प्रक्षेपित की जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने की भी योजना बना रहा है। मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित नीतियों का प्रभार संभालने के लिए एक नया कार्यालय बनाने पर भी विचार कर रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी डेवलपर कंपनी ओपनएआई का कहना है कि वो 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ चैट जीपीटी का एक नया संस्करण पेश कर रही है। ओपनएआई ने मंगलवार को चैट जीपीटी फॉर टीन्स की घोषणा की। कंपनी का कहना है कि यदि सिस्टम यह अनुमान लगाता है कि उपयोगकर्ता 18 वर्ष से कम आयु के हैं या यदि वे बताते हैं कि उनकी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच है तो उन्हें स्वचालित रूप से किशोर संस्करण में डाल दिया जाएगा। ये संस्करण आत्महानि, भोजन संबंधी विकार और यौन या ग्राफिक सामग्री सहित उच्च जोखिम वाले विषयों से संबंधित बातचीत को प्रतिबंधित करता है। इसका स्टडी मोड छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय चरण दर चरण सवाल पूछते हुए मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका में युवाओं के एआई के साथ अक्सर बातचीत करते हुए उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। माता पिता और अन्य लोगों ने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की है। जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जुलाई में 34.4 लाख से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% की वृद्धि है। मार्च के बाद ये पहली वृद्धि है। चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य जगहों से आने वाले पर्यटकों ने इस कमी की भरपाई कर दी है। जापान के राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई में जापान में 34,42,100 विदेशी पर्यटक आए, जो जुलाई महीने के लिए अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। देश या क्षेत्र के आधार पर हांगकांग को छोड़कर चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में द्विपक्षीय संबंधों में खटास के कारण 56.1% की गिरावट देखी गई। इस बीच 8,94,000 से अधिक सैलानियों के साथ दक्षिण कोरिया इस सूची में शीर्ष पर रहा, जो 31.9% की वृद्धि है। ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी 26.4% की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 7,63,000 हो गई। पिछले साल जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जिसका कारण जापान में संभावित आपदा को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें थीं। इस जुलाई में हांगकांग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया और ये बढ़कर 2,72,000 से अधिक हो गई, जो 54.8% की वृद्धि है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।